0: আর পেট, ছাতি, মুটু, মধুমেহা র থাইরয়েড রোগ বিশেষজ্ঞ প্রাধ্যাপক ডাক্তার তীর্থলাল উপাধ্যায়,
1: গণ্ডকী মেডিকেল কলেজ জিএমসি মা কার্যরত বরিষ্ঠ নশা তথা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অচ্যুত আচার্য,
0: হারজনী নশা তথা বাত রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার টিকারাম পৌডেল
1: র ভিডিও এক্সরে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুরিন্দ্রা আচার্য আউনুহুনে ভয়কালে সম্বন্ধিত রোগকা বিরামীহরুলে সময়মাই উপচার গরাই মৌকাকো ফাইদা লিনুহোলা।
0: সময়মাই স্বাস্থ্য উপচার র পরামর্শ লি স্বাস্থ্য লাভ লিনুহুন হার্দিক অনুরোধ গর্দছৌ।
1: এস দুলিগৌড়া পোলি ক্লিনিকমা নাক কান র ঘাটিকো বিশেষজ্ঞ সেবা, সুগার, প্রেসার, থাইরয়েড, পাইলস, ফিস্টুলা র ফিসারকা সাথে হাইড্রোসিল, হার্নিয়া র পিসাব সম্বন্ধী সমস্যাকো দৈনিক বিশেষজ্ঞহরুবাট উপচার গরিন্ছ।
0: সাথেই কিশোর কিশোরীহরুলাই পরিবার যোজনা সম্বন্ধী নিঃশুল্ক পরামর্শ সমেত দিইন্ছ।
2: থপ জানকারীকো লাগি সম্পর্ক দুলেগৌড়া পোলি ক্লিনিক প্রালী, ফোন 0654141129 র 98560131053।
1: हाम्रो बेल चौतारामा आइतबार हाट बजारमा मात्र होइन नि, सबै दिन ताजा तरकारी बिक्री हुन्छ नि।
0: अरु दिन पनि हाम्रै शुक्ला गण्डकीको उत्पादन पाइन्छ।
1: हो त, शुक्ला गण्डकीका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र अन्य कृषि उपज खैरनी चार महिला विकास बहुद्देश्य सहकारीले बिक्री गरिदिन्छ। होइन, कति हतार गरेको कुरा सुन्नु पर्दैन।
0: थाहा छ के, बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म र दिउँसो 4 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म जहिले गए पनि हुन्छ, होइन र?
1: प्रबर्धक शुक्ला गण्डकी नगरपालिका र श्री खैरनी चार महिला विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड।
3: Admission open, Pokhara College of Management, PCM, affiliated to Pokhara University, 24 years of academic excellence in management, bachelor program, 4 years program of bachelor in business administration, BBA, 4 years of IT program, bachelor of computer system and information technology, BCSIT, 4 years program of bachelor of business administration in finance, BBA finance. Forms are available at college administration at 9 a.m. to 3 PM. Science and management, both stream can apply. Intro to learn, go forth to serve. Further details, Pokhara College of Management, PCM, Gyanmarga, Nadipur, Pokhara 3, Kasthi, Nepal. Phone 061-544-761-570-124. Email info@pcm.edu.np. Website www.pcm.edu.np.
4: लौ आयो खुसीको खबर, होलसेल तथा सस्तोमा कपडा खरिद गर्न चाहनेहरूको लागि खुसीको खबर।
5: ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँ हाम्रै सहर दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक नजिकै गण्डकी हार्डवेयरको सटर लाइनमा रहेको फ्रेन्ड्स फेन्सी हाउसमा आउनुहोस्। सस्तोमा मन परेको कपडा रोजी रोजी लैजानुहोस्। बालकदेखि वृद्धसम्म सबै उमेर समूहलाई आवश्यक नयाँ तथा आधुनिक डिजाइनका कपडाहरू होलसेल मूल्यमा बिक्री गरिन्छ।
6: जुत्ता, चप्पल, सुट, पाइन्ट, लेडिज आइटम, साडी, कुर्ता, सुरुवाल होलसेल मूल्यमा बिक्री गरिन्छ।
5: सम्पर्क प्रिन्स फेन्सी हाउस, मोबाइल 98066081115।
7: आहा, घर त साह्रै चित्त बुझ्दो भयो, होइन बडी? अब किचनको लागि पनि सामान गजबकै ल्याउनु पर्यो, बरु कहाँ जाने होला त?
8: आ बुढा, केलाई चिन्ता लिनु छ र? ओल्लो घर पल्लो घरतिर सबैले सोभि गिफ्ट एन्ड किचन कर्नरकै सामान ल्याएका रहेछन्। मलाई पनि त्यहाँको भाँडाकुँडा चाहिँ साह्रै मन पर्यो, हामी पनि त्यतै जाम।
5: हजुर, हामी कहाँ स्वदेश तथा विदेशबाट आयात गरिएका किचन तथा गिटका गुणस्तरीय सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। साथै समाज, क्लब तथा आमा समूहलाई आवश्यक भाँडाकुँडाहरू खरिदमा विशेष छुट दिइन्छ भने पसलदेखि 3 किलोमिटर दूरीसम्म होम डेलिभरी समेत गरिन्छ।
6: सम्पर्क सोभि गिफ्ट एन्ड किचन कर्नर, दुलेगौड़ा, युनिक डिपार्टमेन्टको 2 घर तल, प्रोप्राइटर जीके श्रेष्ठ गणेश पार्वती श्रेष्ठ, फोन नम्बर 0654142334 र 98171656।
9: वीरेन्द्र
1: स्वास्थ्य क्लिनिक दुलेगौडामा नेपाल आर्मी हस्पिटल तथा पद्मा नर्सिङ होम पोखरामा कार्यरत वरिष्ठ फिजिसियन पेट छाती मुटु थाइराइड तथा सुगर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदर्शन सुवेदी आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित रोगका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य लाभ लिनुहुन हार्दिक अनुरोध

विज्ञान विश्वविद्यालय को पांचों दीक्षांत समारोह आज हुए विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार प्राध्यापक सुबीर सिंह का अनुसार इस वर्ष विभिन्न संकाय और कार्यक्रम उपाधि प्राप्त कर कुल 2193 विद्यार्थी दीक्षांत समारोह में दीक्षित होने योग्य भैया दीक्षित होने में स्नातक तह का 1836 जना स्नातकोत्तर तह का 327 और विद्यावारी तह का 30 जना उच्च तह का प्राविधिक तथा वैज्ञानिक हो सकते सिंहका अनुसार कृषि संकायतर्फ कृषि स्नातकमा 1372 स्नातकोत्तरमा 212 र विद्यावारीतर्फ 19 जना योग्य भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पशु विज्ञान पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायतर्फ पशु चिकित्सा तथा पशुपालन स्नातकमा 97 पशु चिकित्सा स्नातकोत्तरमा 51 र पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विद्यावारीमा 23 जना दीक्षित हुनुहुन्छ। विक्रमसम्म 2066 असारमा स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको 16 वर्ष पूरा गरेको छ। विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार स्थापना कालदेखि हालसम्म विभिन्न संकाय र तहमा गरी कुल 5906

0: Συνήθως το τάπο πέτει. Το πάει το μεγνά το κομμάτι φέει τρόμα λογάνι γουσπονί αμικαχασού.
1: Βίγετ πόντρο βασιδική, ουτρίστο διζάιν, πρεσούν πως ο δετάμα τραχακού μάντζι για σαφάλι.
0: Όσορ αγούσα σουλτάδι πασέ, γρήγορα πίτε πατσά.
2: Άκουσε το τα άδρυ διζάιν το πόρτεφρα, βιβάκασε και τα μολα πόρτε πικρητικά, σατ πίργανου πόρτα, άμυλα εισόδερμος. Όσο δίκη πισλάκι τυράκι.
0: Όν προσέλ αγούσε σύντσοδι πασέ, σύντλαγον το κυκλάρ του λιγουλα πίτρι βασά, ο πάρτορ γούς βαγαδορ σύνο. Κοπέ, ακού τα πιστήμια πάντσακα, Wait this fancy safety. Εδώ, αυτό το πιστήμα τσέχεκι, πότρα άκρη τσαξέρ.
1: Αμρο καρίγουμ, ορούγω με να κάνω, το πιστήσω να βοηθεί.
0: Συνούσνα, το ανάρ πόδρα άψε του φάντα, σαν το ειχθήκε να άψε τρεις βάτερα εγώ τα πρακτηρία. Να άντρο μακρόινα, ουτήστε το σημαντικό.
1: Το πιστήμα, το.
3: Κάπου, η πιλ offset base, στο πλάνοντα και τσάρ του λεγόντα, γόρα πατή λόγου βίτσα ραχικό
1: μόνο. Ιαχά, flex print, banner, wooden wood bana in Kasati, Maya Cucino, cop medals of Pramata Tatala, Potra Patika, Pusta Karate Kakata Patra, Art Pusta Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra, Patra Patra,
0: Το πάιτορ που δημιουργεί στη κέρι, που αν θα πει πάνω κάτι, αυτό πάνω σε τρυπαρί. Γουά, αν θα πει πάνω κάτω, κάτω σε πάνω.
4: Άρχονα με το σκουροβορείο, που είσαι αφόβλη, το να δείτε να ψει. Κύριε γονή, πόσο γονή, κάνα ζώνη, κύριε νόν, κύριε βοητάει, που είσαι αφόβλη, πως είναι, τι κοτά να πω. Έρω να βάει. Άρχονα με το σκουροβορείο, σάμα λίνα κοϊλή, κούν κοσόλμα, κοϊλή, κούν κοσόλμα, ντουντα, ντουντα, γάρας.
0: Λόταει, που είσαι αφόβλη, πως είναι κούτι να δώνει όνει. Που είναι όλα το τάπα, ρούσα τα άσμα δάνους νο. Τζόβλη τη δουλάν σε μα κασούδα ή σάμα, και ούτε η σάμα μου είπα είναι. Ούτε η σπέρκα τσόρ, σημαίνει το ρόλ, σημαίνει το ρεφίτιν. Δε στα πάτα,
5: हजुर सुन्नुहोस् त शिशुको खबर ल्याएको छ अब न्युरो रोगको उपचार पोखरामै हुन्छ दस हजार भन्दा बढी बिरामीको सफल अपरेसन गरेका अनुभवी प्राध्यापक डाक्टर एम रोका अहिले गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा नौ पृथ्वी चोकमा आउनुभएको छ नि
6: मस्तिष्क मेरुदण्ड र शरीरको न्युरो समस्याहरू अब डराउनु पर्दैन अनुभवी हात अनुभवी डाक्टर यही छन् नि
5: अठाइस वर्षदेखिको अनुभव न्युरो आइसियु तथा ओटीको सुविधा भएको थप जानकारीका लागि 061-588-595-574-044
6: गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो भरोसा
0: साइनी दिदी आलु लगाउने बेला भयो मल पाउनु भयो त ए साई पनि घरै हुनुहुँदो रहेछ त है ल्याउन त कहाँबाट ल्याएको निकाल्छे हाम्रो त बुढाले ल्याएका हुन् मल पनि साह्रै राम्रो रहेछ
4: सुन्न त माइली घरपतिको सफल एक टोलमा रहेको कुखुराको थम्मा त एकदमै राम्रो ओतमा राखेर बनाएको मल पाइँदो रहेछ छिटो जाऊ त अन्त भन्दा सस्तोमा पाइएछ है मैले त त्यहीँबाट ल्याएको
0: ए हो र आजै म आजै जान्छु
1: हजुर यस हाइजेनिक राज प्रणालीमा गुणस्तरीय कुखुराको मल पाइनुका साथै होलसेल मूल्यमा ब्रोइलर र गिरिराज कुखुरा पनि पाइन्छ साथै माछा चाहिएमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस्
0: हाइजेनिक राज प्रणाली शुक्लागण्डकी आठ सफल एक लिटर गणपति प्रोप्राइटर रामकृष्ण भण्डारी मोबाइल 9856062891
7: सुवर्ण अवसर सुवर्ण अवसर सुवर्ण अवसर
1: अब दिल्ली टौडा स्थित महर्षि आयुर्वेद फर्मामा आयुर्वेद डाक्टर विवश वास्तुलाद्वारा आयुर्वेद मौलिक पद्धतिबाट विभिन्न रोगहरूको सफल उपचार
7: आयुर्वेद औषधि आयुर्वेद थेरापी एवं अनुभवी आयुर्वेद डाक्टरद्वारा उपचार हुने रोगहरू
1: पेट सम्बन्धी समस्याहरू ग्यास्ट्रिक वायुगोला कब्जियत अरुचि पेट दुख्ने पोल्ने अमिलो पानी आउने जस्ता समस्या
7: बेरो फर्कने र पिएनएसको सफल उपचार
1: तिनास नाकको एलर्जी नाकमा मासु पलाएको
7: मृगौलाको पत्थरी पिसाब पोल्ने
8: प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्या,
1: स्त्री तथा प्रसूति रोग, महिनावारी गडबडी, सेतो पानी बग्ने, निसन्तान तथा यौन दुर्बलता, पीसीओडी,
8: नसा तथा दाँत सम्बन्धी रोगहरू, ढाड कम्मरको दुखाई, घुँडा खिएको तथा अन्य सम्पूर्ण नसा रोग,
1: जन्डिस, टाउको दुख्ने, अनिद्रा, हात खुट्टा गल्ने, पोल्ने र झमझम गर्ने,
8: साथै पुराना निको नभएको टाउ, छारा सम्बन्धी रोगहरू, एलर्जी, धुपी, ढाड जस्ता दीर्घ रोगको सफल उपचार।
1: उपचार हुने स्थान महर्षि आयुर्वेद फर्मा दुलेगौंडा।
9: पुनश्च महर्षि आयुर्वेद फर्मा पहिले भएको स्थानबाट केही माथि दुलेगौंडा बस पार्क नजिकै ऋषि कुमारी स्पोर्ट्स संघको क्षेत्रमा थप नयाँ व्यवस्थापनको साथमा छरेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
10: पसल छरीको सूचना शुक्ला गण्डकी चार दुलेगौंडामा विगत 28 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ओम एम आभूषण उद्योग पहिला भएको छाउँबाट अहिले भीमसेन मन्दिर दुलेगौंडाबाट मित्र दिल्ली असम्बरी इन्टरप्राइजेस नजिकै थप सेवा सुविधाको साथ सरेको सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछ। प्रोपाइटर मिङ बहादुर सुनार 98253 9100 122 98058 28008 र 98470 2046।
11: आधिकारिक
10: विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी सात सेवा प्रोपाइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98573 2279।
12: कालिका सुनचारी पसल दुलेगौंडा हेपो सोप आफ्नै भवनमा छापावाला सुनका आधुनिक डिजाइनका तयारी गरगहना र राशि अनुसारका पत्थर पाइन्छ। अर्डर अनुसारका गहना तयार गर्नुको साथै पुरानो गरगहना नयाँ गहनासँग साटपिट पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301।
13: सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सुसूचित हुन पाउने तपाईँको अधिकार।
10: सेतो
14: छरितो र गुणस्तरीय सेवाको एउटै नाम कृष्ण आसन अक्षेत्रेस दुलेगौंडा बिपी चोक
10: शिलालेख र छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् सम्पर्क 98461 3004।

0: की इन दोनों के जन्म पत्र एक है और इनके नाम भी एक है, माही
1: एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है।

0: त्यसैले दान गरौं, सकेको गरौं सबैले गरौं।
1: अनुरोध शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र व्यवस्थापन संस्था शुक्ला गण्डकी आस्त न हो।
2: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट्ज अंतर मन की आवाज।

टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छाता वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साटफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301

0: भगवान श्री हॉस्पिटल एंड अलाइड साइंसेज न्यू रूट को कराना अब सभी प्रकार के उपचार से बात संभव
1: है। प्राध्यापक डॉक्टर वंदना श्रेष्ठ
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर डीरा सिंह जोशी डॉक्टर चुमयापुर
1: विशेषज्ञ तथा पेट कॉलेज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास अधिकारी डॉक्टर शंकर बराल
0: हाड़जोड़ी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजुमान सत्य उप प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण थापा र हाड़जोड़ी नशा रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोस्कोपी सर्जन उप प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष गुरुंग
1: मोटर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेज बहादुर गुरुंग कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि सेठ
0: यूरोलॉजिस्ट तथा मृदुला प्रत्यारोपण सर्जन सह प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश छेत्री डॉक्टर जुजुराज श्रेष्ठ
1: नाकान घाटी तथा थायराइड सर्जन सह प्राध्यापक डॉक्टर विकास गुरुंग छाला विज्ञान जेनेरोलॉजी का कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अस्मिता वाग्ले
0: रेडियोलॉजिस्ट प्राध्यापक डॉक्टर मनीष किरण श्रेष्ठ डॉक्टर सुमिरन श्रेष्ठ
1: एंटीबायोलॉजिस्ट डॉक्टर भूपेंद्र कुमार तुलाचल प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन उप प्राध्यापक डॉक्टर पीयूष गिरी
0: एनेस्थेसियोलॉजिस्ट उप प्राध्यापक डॉक्टर विशाल गुरुंग डॉक्टर सुष्मिता गुरुंग
1: जनरल सर्जन प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र विक्रम गुरु सह प्राध्यापक डॉक्टर देवेंद्र श्रेष्ठ
0: फिजिशियन डॉक्टर अनुमल पौडियल र मनोचिकित्सक डॉक्टर मनकाजी थापा मगर
2: Word, ICU, MICU, General and Laparoscopy Surgery Seva, Post-op Seva, Physiotherapy, Endoscopy, Colonoscopy, ECHO, EMT, Alter, PFT, Urotherapy, Dialysis Seva, Ra, 24 Ghanta Emergency Seva Sathe, Ami Visheshajna Doctor Dwara Seva Pradan Gariyeko Jankari Garaudachu.
3: 24 Ghanta Pathology Seva Uplabdha Chha. Vistrit Jankari Ko Lagi, Padmashri Hospital and Allied Sciences Rally, Pokhara 9 Neuro. फोन 0160 590162 590163
4: हजुर बाले आँखा देखिन धमिलो भयो भन्नुभएको महिनौ भइसक्यो मेरै आँखा पोलेर हेर्ने भएको छैन आँखा पनि राम्रोसँग जाँच्ने चस्मा पनि रोजी रोजी कहाँ पाइन्छ होला त
5: अब चिन्ता नलिनुहोस् आँखा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको एउटै समाधान दूरबारही चस्मा घर एन्ड आँखा उपचार केन्द्र हामी कहाँ विभिन्न प्रकारका आकर्षक तथा ब्रान्डेड चस्मा पावर चस्मा शीतल चस्मा लगायत हरेक प्रकारका चस्माहरू तथा कन्ट्याक्ट लेन्स सुपथ मूल्यमा पाइन्छ यहाँ प्रतिदिन अनुभवी विशेषज्ञद्वारा आँखा जाँच तथा उपचार गरिनुको साथै परामर्श दिइन्छ साथै आँखाको माइनर अपरेसन पनि गरिन्छ र ड्राई आई सम्बन्धी उपचार पनि गरिन्छ धुर्दारही चस्मा घर एन्ड आँखा उपचार केन्द्र धुलेगौडा प्रोप्राइटर दिव्य मल्ल ठाकुरी 9800551 दिपेश मल्ल ठाकुरी 9800551 दीप मल्ल ठाकुरी 9800551
6: अनुसारका गहना तयार गर्नुको साथै पुरानो गर गहना

समाचार प्रगति स्टार में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपति के सभापति रघुलाल सानिया संविधान

काली गंडक की नदी में बेपत्ता का युवक को प्राप्त पाकिस्तान में बम विस्फोट में पड़े 7 जना की मृत्यु। राष्ट्रपति जरदारी द्वारा आक्रमण को कड़ा निंदा। राष्ट्र विश्व एक दिवस

0: चैनल गेट ट्रस्ट निर्माण टैंकिंग स्टैंड फलामर स्टील का रेलिंग घर निर्माण का लगी आवश्यक पड़ने के स्टील का संपूर्ण सामान खिलौना कुर्सी टेबल बेंच लगाए फाइबर गैस बाट उत्पादित फन पार्क एवं बाल बालिका का लगी आवश्यक पड़ने सामान उपलब्ध छ।
1: साथ ही शुक्ला गंडकी में पहले पटक कृषि फार्म तार बार भव्य तार विद्यालय संस्था तार बार करी संरक्षण का राशि अत्यंत उपयोगी विभिन्न टाइप का दिवाई जाने थोक मूल्य में उपलब्ध कराई
0: प्रोपाइटर ओंकार नागेला संपर्क 98560613 98067294।
2: पद्मश्री हॉस्पिटल एंड अलाइड साइंसेज न्यूरिट पोखरा में अब सभी प्रकार के उपचार सेवा संभव था।
1: बाल रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर दिवस तुलाकर प्राध्यापक डॉक्टर वंदना श्रेष्ठ
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर डेरा सिंह जोशी डॉक्टर चुम्बाया पुल
1: विदेशी तथा पेट कलेजे रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास अधिकारी डॉक्टर शंकर प्रधान
2: हाड़जोड़ी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रमान शक्ति उप प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण थापा हाड़जोड़ी नशा रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोस्कोपी सर्जन उप प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष गुरु
1: मोटे रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेज बहादुर गुरु कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि शेखर
2: न्यूरोलॉजिस्ट तथा मेघोला प्रत्यारोपण सर्जन सह प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश छेत्री डॉक्टर जीजुराज श्रेष्ठ
1: डॉक्टर घाटी तथा थायराइड सर्जन सह प्राध्यापक डॉक्टर विकास गुरु थाना विज्ञान रेडियोलॉजी डॉक्टर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अस्मिता वाग्ली
2: रेडियोलॉजिस्ट प्राध्यापक डॉक्टर मनीष किरण श्रेष्ठ डॉक्टर सुमिरन श्रेष्ठ
1: एंटीबायोलॉजिस्ट डॉक्टर भूपेंद्र कुमार तुलाकर प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन उप प्राध्यापक डॉक्टर पीयूष गिरी
2: एनेस्थेसियोलॉजिस्ट उप प्राध्यापक डॉक्टर विशाल गुरुंग डॉक्टर सुष्मिता गुरुंग
1: जनरल सर्जन प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र विक्रम गुरुंग सह प्राध्यापक डॉक्टर देवेंद्र श्रेष्ठ
2: फिजिशियन डॉक्टर अनमोल पौडियल र मनोचिकित्सक डॉक्टर मनकाजी थापा मगर
3: वार्ड आईसीयू वन आईसीयू जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा पोस्ट ऑप सेवा फिजियोथेरापी इंडोस्कोपी क्रोनोस्कोपी इको ईएमटी अल्टर पीएफटी यूरोप्रोनोपी डायलिसिस सेवा र 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछ।
4: 24 घंटा पार्थोलोजी सेवा उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलाइड साइन्सेस प्रणाली पोखरा 9 फोन 0135 91 62

गोलीबार से शुरू होने वाली स्वतंत्र पार्टी के पहले महाधिवेशन में जोधपुर बनाना निश्चित कर दिया गया था। आज बसों को केंद्रीय समिति की बैठक जोधपुर टनल बनाना जो पस्तौली पनी पारवाही

दोनों ही जिला का बासठ स्थानीय पहाड़ों को नगर को निश्चित तथा विरोपण घोषणा कर दिया था। चालू आर्थिक वर्ष भित्र जिला का सभी प्राधिकारों को नगर को निश्चित तथा विरोपण घोषणा करने तथ्य अनुसार जिला के सभी प्राधिकारी सुपर उपलब्धि पढ़न आगे सभी प्राधिकारों की रिवार को नगर को निश्चित तथा विरोपण घोषणा करिए।

0: विस्तृत जानकारी को लगी पद्मश्री हॉस्पिटल एंड एलाइड साइंसेस प्रणाली फोर खुरा नौ न्यूरो फोन 01 5 90 162 5 90 163।
1: संपर्क 9 4 1 3 49 3 4।